0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखंड रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकिया हंड
1: विलाव दे दहाय
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: दोतराये पेरलिकरण एनएलबी मेगा पावर तेवंत मेगा सुपरी टैग द अमतरव रुपियाल कोटी एक पावर सुपरी टैग सह ग्रैंड सुपरी टैग द सुपरी रिमोट रतया एनएलबी